गुरप्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोट जना कर सेवा लाया गाया जियो सा भगत वचल तेरा बिरद रखाया जियो पूर्ण सपनी जाई जियो क्यों पेखा पीतम कवन सुकरनी जियो संतां दासी सेवा चरनी जियो ए जियो बताई बल बल जाई जियो तेस निव निव लागो पाई जियो पोथी पंडित बेद खो जनता जियो होए बैरा

संदेशा पै चरण हारे जियो तुद बिन कित वितरिए जियो संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो सेख सुहावी ए मन बगसंदा जियो देख दर्शन ए सुख लही है जियो चरण पखार करी नित सेवा जियो पूजा अर्चा बंदन देवा जियो दासन दास नाम जप लेवा जियो बिनो ठाकर पै कही है जियो इच पुनी मेरी मन तन हरिया जियो दर्शन बेगत सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप तरिया जियो ए अचरज नानक।

वेद प्राण जास गुण गावता को नाम हियो मैं ही है मो तर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल साब हर रे मानस दे बोर नहीं पावे कछु पाप मुक्त का कर रे नानक कहत ना गाये करुणा में पाप सागर कै पार उत्तर रे रा गौड़ी अस्पदिया महला पहला गौड़ी ग्वारे री क्यों अंकार सतनाम करता पुर गुर प्रसाद नित सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर्या बिकमार त्रिकुटी छुट्टी बिमल मजार गुर की मात जी आई कार इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन मस गुर शब्द पछानिया रहो एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पई सूहा रंग माया नदर पई बिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मार जागया शब्द रवै मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए वसै जम का पौ पागया सद रही बदंग अहंकार अंकार जित चित्र हर स्यो रत हुक्म अपार जात रहे पत के आचार दृष्ट भई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किसे व किस दे देव चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवा गुर लागो पाए पागत करी राचो हर नाए सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गौरव गुतंग सुख आत्म दयन ज्योत पई ज्योति माहे समाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करुणा करता करता जाना नै पंडित नै चतुर सियाना नै बोलो नै परम पुलाना कथो ना कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत

मनमुख मूढ़ माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास मनचन चलतावत फोन तावै साचे सूचे मेल न पावै नान गुरमुख हर गुण गावै गुरु म गौड़ी ग्वारे री महला पहला ओम मैं करत्या नै सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सा सगल विगुताय पावै दोए हो कमावै तोर लिखिया होए ऐसा जगत जग देखिया जुहारी सब सुख मांगै नामी विसारी रहाओ आदृष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहना बिरथा जाए गुरमुख दिसै सह सुपाए सेवा सुरते एकलिव लाए सुख मांग दुख अगल होए सगल विकारी हार परोए बिना झूठा मुक्त न होए कर कर करता देखै सोए तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुपाए गुरमति नाम सहब नाम हृदय विसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मन तनमय साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज थाओ प्रेम परायण प्रीतम राओ नदर करे ता बूझे नाओ माया मोह शब्द जंजाल मनमुख चील कुशत कबकिया बिकराला सतगुर सेवै झुके जंजाल अमृत नाम सदा सुख नाला न गुरमुख पूजा एक लिवलाए निज कर वासे सत समाए जन्म जमन मरना डाग रहाए पूरे गुर ते ए मत पाए कथनी कथाओ ना आवै और ओ गुर पुछ देखो देख नाही दर होर दुख सुख पाणे तिसे रजाए नानक नीच कहे लिवलाए गौड़ी महला पहला

बारी सर्ब ठौर मोह सहाय दुष्ट दोख तेले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखण का शय करता श्री अह तुज जम पै दय अल्ला पूर्ण कर ग्रंथ तत्काल मन बाहित फल पावे सोई दुख न तिसै बे आपत कोई अडिल

तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ दयावे तहाय साब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जरा नाम जपिया वन के छकिया देव चलाई तेग वाह देख के अमृत कीता दिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां तिरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक के सां सुवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावन चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छया रियायत देग तेग फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखा नू सिखी दान किस

जगदी बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाए मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महाप्यान दूत जम तलाय तह केवल नाम संग तेरा चलाय जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम के नमाहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं थराय हर को नाम कोट पाप पर हरय गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हरगा नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंदना भरा हरगा नाम जपत निस्तरा अनग माया रंग तिखना बुझावे हरका नाम जपत आगावे जे मार्ग ए जात अकेला ए हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याई नानक गुरमुख परमगत पाई छूटत नहीं कोट लखबाही नाम जपत तै पार पराही अनग बिघन जाए संगार हरका नाम तत्काल उदार अनग जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम आओ मैला मन कबू न धोवै हरका नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साध गए संग जे मार के गने जाहे ना कोसा हरका नाम ऊहा संग तोसा जे पैडे महा अंध गुबारा हरका नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा कोना सिंजानू

राम संत जना गया मन विसराम, अर्घा नाम दास की ओट, अर्के नाम उधरे जन कोट, हर जस करत सं दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नोदान, मंत्र रंग रते रंग एकै, नानक जन का वृत विवेका। हर का नाम जन को मुगत जुगत,

अनुग जतन कर त्रिशन्ना त्रप है पेघ अनेक अग्न नहीं बुझ जाए कोट पाव दरगह नहीं सज जाए शूट से नाही ऊप पयाल मोह व्यापे माया जाल अब्र करतूत सगरी जम डान है गोविंद भजन मिंतिल ही मान है हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ

अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावै एक वस्त कान भी खोट गवावै एक भी ना दे दस भी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर

अष्टपदी जिप्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रखमन माहे जिप्रसाद सुगंध तल नामे तिसको सिमरत परमगत भावे जिप्रसाद वसे सुख मंदर तसे ध्याए सदा मनंदर जिप्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो सरसना जिप्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय ध्यान जोग जिप्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे जिप्रसाद सुख सेज सो जय मन आठ पहर थका जस गा बीजा जिप्रसाद तु सब कहू मान मुख ताको जस रसन बखाना जिप्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पथ से ती कर जावे जिप्रसाद आरोग कंचन देही लिबरावत सराम स्नेही जिप्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जिप्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभुता काय जिप्रसाद तुझको ना बहु छाय मन साह साह सिमरो प्रभु उचे जिप्रसाद भाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे हे जिप्रसाद आ भुखन पहरी जाय मन ते सिमरत को आलस की जाय जिप्रसाद अशुभ हास्त सुबारी मन ते प्रभु को कबहू ना बिसारी जिप्रसाद भाग मिलख तना राग प्रोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सा तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका त्याहन जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नेकी जात स्वप्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहा गुरप्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद वेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण भले जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग बरगत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट

दर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टामृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एको प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर पुकारु माहा, ब्रह्म ज्ञानी का ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी तापत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का स्वभला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक, ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी

बरस सगल निस्तार अष्टपति मिथ्या नाही रसना बरस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर तर रूप न पेख नेत साध की टहल संसंग हेत करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आप उसको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर बल की बासना मंत्र टरा इंद्री जित पांच दोखते राहत नानकूट मदे को अब ऐसा अपरस वैष्णो सहज उपर सुप्रसन्न विषण की माया दे भिन्न कर्म कर तो वह नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म का फल की काहु फल की इच्छा नहीं बाछय केवल भगत कीर्तन संग राचय मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल आदृढ़ वरे नाम जपावे नानक वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संगमंत बिंसय सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सासंग पापा मल खोवे तुष भगवती की पातुतम होवे भगवंत की टहल कराए नित नीत मंत्र अर्पय बिशन प्रीत हरके चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आता मैं सोदय राम नाम सारस पीवा उस पंडित गाय उपदेह जग जीवा हर की कथा हृदय बसावे। सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमृत बुझे मूल सुखम मैं जाने असूल चौहरना को दे उपदेश नान उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौहरना में जपे गौ नाम जो जो जपे तस्की गत होए सा संग पावे जन कोय कर कृपांतर उतारे पास ब्रेद मुक्त पात्र को तारे सर्वरो का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कि तेरा पाइय धर्म नानक तिसमिलै जिलखिया धुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तस नदरी आया दाद संदर भाय तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास तरके प्रमान अपने दास को आप कृपा करे तो दास को सब सोजी पर सकल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म है तावै जीवन मुक्त सब कहावे तैसा हर्ग तैसा सोग सदा अनंत नहीं ब्यो तैसा स्वर्ण तैसी सुबाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानको पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जिद जिद कर राखे तैसा तन्नाओ आपे करन ग्राम न जोग प्रभावे स्वीफन होग पसर आपे आनत तरंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल सलोक उस्तत करहे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभरची भाविद आनक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तबीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कपका विचारे कई कोट नवतन नाम ध्यावे नान करते गंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब को हिरे कई कोट पर दुख ना करहे कई कोट माया सर माहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति योगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बृख बजाए कई कोट पवन पाणी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखेतर कई कोट देव दानव इंद्र शेर शतर सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र कई कोट किए रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जन जखे किनर पिसाच कई कोट भूत प्रे सूकर मृगाच सबते डेरा सब होते दूर
ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਪ ਤਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵ ਅਮਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਫਿਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲਿਆ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗੀਏ ਧਰਮੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ। ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕਿਹਾ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤਨ ਲਿਵਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ, ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨਕੋ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ।

गले अष्टपदी, जिसके अंदर राज अभिमान सो नर्क पाती अवसमान, जो जाने में जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आप इसको कर्मंत कहा वे जन्म मरे बो जोन प्रमा भय, तन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा इसका हृदय गरीबी बसावे, नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे। धर्मंता कर कृपावे, त्रिन समान काश संग ना जावे। बहु लश्कर मान खो पर करे आस, पल पीतर ताका हुए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में हो जाए बसमंत। किसना बदे आप अहंकारी, धर्मराय तुझ करे इखबारी। गुरप्रसाद जागा बैठे अभिमान, सोजन नानक दरगे परवान। कूट कर्म करे हों तारे, शर्म पावे संगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, तर्क स्वर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवय, हर दरगे को कैसे गवाए। आपस को जो भला कहा भय, तिसे भलाई निकट न आवय। सर्व की रेन जाका मन होए, कह नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते कश हुए, तब इसको सुख ना ही कोए। जबे जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग ने चल ना ही चीत। जब लग मोह भगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा दे बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक हम छूटै। सहस घटे लक उठता वै, त्रिपतना आवै माया पाछे पावै। अनक भोग मिख्या के करै, नै त्रिपता वै खब खब मरै। बिना संतोख नहीं कौ राजाय, सुभन मनोरथ बिरथे सब गाजाय। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, ना सदा सदा नान घर जाप। करन करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप रब सोए। योग शकीनो सपने रंग, सबते दूर सब हूँ क्या संग। बुझा देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सदी रया समाए। आप उपदेशा समझे आप, आपे रचया सबके साथ। आप किन्नु अपन विस्तार, सब कष्ट सुखाओ करने हार। उसते पहन कहो किश होए, तान धनंतर एकाश होए। अपने चल ताव करने हार, कौत करे रंग आपार। मन में आ मन अपने माहे, नानक इवंत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद कने वखयानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे कने बरलै चीना। भला भला भला तेर रूप, असुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी, कट कट सुनी सरवन बखयाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत,

चार अष्टपदी। संत के दुखन आर जागट है, संत के दुखन जमते ने छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मातो ए मलिन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के आते को रखना कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जय करे नानक, संत संग नंदक भीतराय, संत का दुखन दे मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवाए, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलाय, संत का दुखन सबको शलाय, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नी जाए, संत दुखी का थाम को नाहे, नानक संत पावे ता ओए भी गत पाहे, संत का नंदक मातताय, संत का नंदक खिंड करना पाए, संत का नंदक मात्यारा, संत का नंदक परमेश्वर मारा।

रंग नाना पे करे एक रंग नाना बिदगी नो विस्तार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर पूर्ण सब ठाए नाना बिदगर बंत मनाई अपने कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाऊं जब जब जीवे नान घर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख साधु केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सात पुरख सा माहे समाणी सात कर्म जाकी रचना सात मूल सात सात उत्पात सात गरणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तसे सब भली सात नाम ब्रभगा सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सात भजन साधु उपदेश साते जन जागे हृदय प्रवेश सत नर्त बुझा जय कुए नाम जब तागी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी गत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट को जिसकी सृष्टो करने हार बरना बूझ गर्त विचार करते कीमत ना जाने किया नानक जो तस्भा सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जन बुझा तस आया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुरु के भजन पदार्थ लहे वे दाते तो काटन हार जाके संग तरा संसार जन का सेवक सो बट भागी जन का संग एकल बलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है भे सच नानक सी भे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सा सा सेवदार दर्शन सा सत वेखन हार नाम सा सत ध्यावन हार आप सत सा सबधारी अभे गुणा पे गुणकारी शब्द सात सत प्रभक्ता सुरत सत साजा सुनता बुजनार को सा सब होए नानक सात सत प्रभ सोए सास रूप हृदय जन मान्या करण ग्राम दिन मूल पछाण्या जाके हृदय विश्वास रूप आया तत् ज्ञान तस मन प्रगटाया बहते नर पोए बसाना सिव जा तस माए समाना बस्तमाए

ताकि गदमित गोयना लाखे प्रभु के सेवक का कोना बहु छाय प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी गिरी में कल राखे भस्म करा नसकर कोट लाके जिसका सास ना काट दे आप ताकू राख देख रहा हाथ मानस जतन करत भवान करत बिरथे जात बारे ना राखे वरना कोए सर्वजिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभला खिडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत मंत्र पिय नाम रतन जन गुरमुख पाया ते किश अवर नाही दृष्टाया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम गा संग नाम राजो जंत्र बताने मंदन नामे नाम समाने उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जेबा दिन रात प्रभ ने जन किन्नी दात करे भगतात्म कै चाये प्रभ ने सिंह रह है समाये जो होवा वसो जाने प्रभ ने गा हुकुम शाने तिसकी महिमा कौन मखानो तिसका गुण कह गना जानो आड़ वैर पर बसे सुरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेहे मंत्र बना तेन जन देहे जन जन अपना प्रभु बिशाता सोजन सर्व थोखा दाता तिसकी शरण सर्व सुख पामे तिसके दर्श पाप मिटामे अब्र सयान सगली शार्थ जन की तू सेवा लाग आवन जाना हुई तेरा नानक ते जन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाव तिसका संग सुदराय नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिखी करा प्रतपाल सेवा गौ गुरु सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मन हराय गुर बचनी हर नाम उचराय सतगुर सिखे बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै सतगुर सिखो नाम धन दे गुर का सिख बड़भागी है सतगुर सिखा हालत पल सवारे नानक सतगुर सिखो जी नाल संभारै गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आ गया मन में सहाय आप जगो कर गशना जनावे हर हर नाम हृदय सत्य आवे मन बिच सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रा सेवा कर तो नेगामी तिसको दुबरा स्वामी अपनी कृपा सरिया अपनी कृपा आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाना सो सतगुर जिस हृदय हर नाम अनगवार गुर को बल जाओ सर्वनिधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंगराता ब्रह्म जन जन्मे पार ब्रह्म एक आप नहीं कश परम सह सियान बलया ना जाइय नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत शरण गत निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर भजन करण आगाने मन संतोखा तंपतिया ने पूरा गुर खेव जाका मंत्र अमर दृष्ट बेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव दिसलय मिलाए जे वाए कु सतनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहु बोला पाउचत प्राणी अगम अगोचर प्राप निर्वाणी निराहार निर्वायर सुखदाई ताकि कीमत गिन न पाई अनक भगत बंधन नित करहे चरण कमल हृदय सिमरे सतबलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हर रस पावे जन गोए अमृत पीवे अमृत सो

अंधकार दीपक प्रकाशे नानक परमो दुख तैते नासे तप्तमाए ठांड बरताई अनंत व्या दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे भाव जुगा निर्भय बसे सगल व्याध मंते खै नसे जिसका सा तिन कृपा धारी सा संग जप नाम मुरारी तित पाई चूके भ्रम गमन सुन नानक हर हर जस सरम निर्गुण आप सरगुण पी ओहि कला धार जिन सगरी मोही अपनी चर अपने चरित प्रभ आ बनाए अपनी कीमत आ बह पाए अरविंद दूजा नाही गोय सर्व निरंतर एको सोय ओत बोध रव्यारू रंग भय प्रगा साधक संग रज रचना अपनी गलधारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ ना चल बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक हे धन सार अष्टपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अमृ भाव समीत बिसारो शरण कमल हृदय उतारो करण काल सो प्रभ समरथ दृढ़ गह हो नाम बात ए तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुंट उड़ता में सो तन हर सेवा ते पामे जिस को निध बांछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करी करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुक पावी रोग ना जाहे रोग मिटे हर अवखद राये सर्व निधान में अरनाम निधान जप नानक दरगे परवान मन प्रबुद्धो हर कह नाये दैत्य स्थापित आवाय ठाए तागो बिगन्ना लागे गोए जागे हृदय बसे हर सोए कलता ती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ पावन से पूर्णो यास भगत पाया तम बरगास तितकर जाय बसे बनासी गौ नान काटी जम्फासी तद विचार कहे जन साजा जन्म रह सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ से बाप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म गावे उदार हर हर सिम प्राण आधार अनुग भावना शूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मंजत नानंग फल पाए संगना चाल तेरे तना तू ग्याल बटामे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बन तंते कहाओ तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार ते कहाओ गमन छुटकार असस्ती रत सवारी झूठा डम झूट बाजारी जिंदी तस बजेना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुरकी मातूले याने भगत बना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल भग जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो संत कह द्रात गत पावो सार बुझ सदर को

मांगे नाम ब्रह्मसार प्रभु की दृष्ट मां सुख होय अर्थ पावे बिरला गोय जिन जाख्या से चंद्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो भर भरे प्रेम रस रंग बजे जाओ साध गया संग परे शरण आन सब दया गंधर प्रगास अंदर निबला बड़े भागी जपया ब्रह्म सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल बात लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक इनो सदा निहाल बंधन गाढ़ मुख जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया शून्य सरदा सब पूरी रब रहा सत्संग है जूरी जिसका साथ लिया मिला हे नानक भक्ति नाम समाये सोगो बिसरै जे घाल ना भान है सोगो बिसरै जे किया जाने सोगो बिसरै जिन सब कुछ दिया सोगो बिसरै जे जीवन जिया सोगो बिसरै जे अगर में राख गुरु प्रसाद को बिरला लख है सोगो बिसरै जे बिगते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरपुरे तथेहा बुझाया प्रभना नानक जन ध्याया साजन संत गुरुए गामान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अभ्रह नाम जपाओ भक्त पाए तरगे संसार भिन भक्ति तनो शीशार सर्व कल्याण सुख निंद नाम बुढ़ जात भाए विश्राम सगल दुखा विनाश नानक नाम जपो गुंदास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतर एही स्वाओ नेत्रो पेक दर्शक होए मान बिकसै साध चरण तोय पग जना के मंत्र रंग बिरला कऊ बावे संग एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कही ना जाए नानक रहा सर्व समाए पर बख्शंद दीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदपुर कारण करतार भगजना के प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लाभे मन हित हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वै कुंठ मुक्त मोख पाए एक नम खरके गुण गाए अनगराज भोग बढ़िया हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पलिसो करनी शोभा तन मंदिर तय बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ देहो निवास सर्व

जब होपत प्रभु केवल धनी तब बांध मुगत गाओ किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्ग सुर कहो कौन आओ तार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव सगत कहो कित ठाए तब शिव सगत कहो कित ठाए जब आप अपनी जो तरह तब गमन डर गमन कत डरा अपना चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपना संत जन मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जमकी त्रास कह हो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप ये प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पा धोता तय बिन मैल कहो क्या धोता तय बिन मैल कहो क्या धोता जय निरंजन निरंकार निर्भान तय गौन गौमान गौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत गौ कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावित किसे भूकम द्रवता वह करण करावन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब गमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्वकलापे परवीनता वेद गदेव कह कव चीन जब अपने आप उतार है तो सगन अब सगन कहा विचारे जय अपन जापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन गई है चेरा बिस्मन बिस्मरा बिस्माद नान अपनी गत जानू आप जा शल अशेद अभे समाया ऊहा किसे ब्याप दमाया आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता

मैं मोह भरम बै बहार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तो नानक एक जगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप धूम पाका आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौत करे आनंद जो जापे।

विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारा पे का विस्तार जात से पावेता सृष्टि उपाय अपने भाणे लय समाए तुम दे भिन्न नहीं किशोया अपन सू सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तस कोई ना मारे सो मुआ जमनो बिसारा तिस्तज अवर का गो जाए सबसे एक निरंजन राय।

अष्टपदी पूरे गुरुका सोनपदे स पार ब्रह्म निकट कर बेह सा सिमरो गोविंद मनांतर की उदरा चिंद आस अनित्यागो तरंग संदना की दूर मन मंग आप छोट बेन्ती करहो सा संग अगन सागर तरहो

नाम गोविंद भगत गय मन विश्राम कोट बराध सासंग मिठाय संत कृपाते जमते शुठाय जाके मस्तक करम रब भाए साध सर नानक दे आए।

दहन गावी है सुनी है मन रखी है पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे आसमाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई।

ना जाई। तीर्थ नावा जेत सुभावा विण पाणे के नाय करी। जेती सरठे उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई सबना जी आकाई। कुदाता सो मैं विसर ना जाई।

निरंकार असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार

खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मिले सुमल पख खाहे

चतुर चक्र जाने, चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भरती, चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले, चतुर चक्र पास है चतुर चक्र वासे, चतुर चक्र मान्य है चतुर चक्र धान्य है, चाचरी शांत न सत्र है न मित्र है न परमंग न पितर है न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय।

चित्त विभूत है, कै मित्तो पासा है, कै आतम प्रभा है, कै चलंग नाग है, कै मित्तो पांग है, मत परिशांत व प्रसाद।

जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवीं तवै प्रसाद सवैये सराबग सुध समूह सिधान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधातक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर सांगे अनुपे उतंग सुरंग सुवारे कोड़ तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन को जात ने बारे भारी भजान के पुह पली बिदन आवत सीस न जात बिचारे ते पहे तो कहां पहे पुह तंत को नांग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देह दिसान को बाजत ढोल में दंग नंगारे गुंजत गुड़ गंजान के सुंदर ही सतही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूत कौन गाने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिनंत को अंत के ताम सिधारे।

चलेंगे। वीर पार बड्डे बरियार विचार हिसार की धार पछैया तोर देश मरेंद मुवासन माद गजान के मान मिलैया गाड़े गढ़ान के तो

जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी भुज उचारे।

है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुहित अरिष्ट डरे तत काला, कृपा दृहित तन जाहे, निहर हो ताके ताव तनक मैं हर हो।

कथियो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जनेद ब्रह्म भुलाया,

गुरु सवारी संगत जी आओ सारी संगत गुरु फतेह बुलाओ प्यार सहित आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम

ठाकुर तुम प्रदास जियो पिंड साध तेरी रास तुम मात पिता हम बारक दे।

है सो हमरी रचया करे गुर कलगी तहर जगदी बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी बहमा वर्ण न साको तू ठाकुरी ऊंच भगवाना सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए बैठो कौन बोल रहे हैं।

सब दिया खोट बाबा नानका खाहे खर्च धन माल कंब वा कंदड़े जेला किन्ना सामी तोला तन जड़ाई अपने लहास सज्जन टोला सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहद साहो जिस पास बैठे आसो ही है सबना दावेसा हो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाहद साहो जिस पास बैठे आसो ही है सबना दावेसा हो एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा

काल मद माधव गावे ललत बलावल गावे ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौ साके आलापे संग रागनी पांचो थापे गौण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौ साक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड को सक्यो वारा कौ खटे भौरा आनंद गाये अष्ट माल कौ साक संग लाय पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोता उठे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरसिहरी लै भार जा संगलाई पांचो हार जा सुरमानंद पास कर आई चंद्र भिमगलन सुहाय सरस बाण वाहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा इष्ट पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी

अंत नंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोडे आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ता कियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कहे पिछे पिछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सदा की सोध कर्म खंड की बाणी जोर तिथा होर न कोई होर तिथा जोत महाबल सूर तिन मैं राम रहा भरपूर तिथा ऐसी तो सीता में मामाए ता के रूप न कथने जाहे नाए मरे न ठागे जाहे जिन कह राम से मन माहे तिथा भगत वसे कह लो करे आनंद सचा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे ता अंत ना अंत तिथा लो लो आकार जीव जीव हुकुम तिवै तिवकार वेख विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुने आर हरण मत वेद उथियार पाओ खलागण तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म अधूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिन्हें नाम ते आया

मुख उजले केती छुट्टी नाल राम कली माला तीजा आनंद एको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परिवार परियां शब्द गावने।

सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, होआ सुभाव सब सेती मन मिलिया, सच्चे लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनू दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन हीरा जित जड़ाओ, शिव सगत आपे उपाए, कहे करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुगत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सस्यों लिवलाए, कहे नानक आप करता पे हुकुम बुझाए, सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे, ततै सारण जानी, ततै सारण जानी गुरु बाजो, ततै सारण जानी तेही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैण विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिनार मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनु अण दिनार लिव लागे, जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रत पाल करे, सो क्यों मनो वसारीए, मनो क्यों वसारीए वरदाता जगन में हार पहुंचावे। उसनों को पोए न सकी जिसनु अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालीए। कहे नानक वरदाता सो क्यों मनो वसारी है, जैसी अग्न उदर मैं तैसी बार माया, माया अग्न सब एको जे ही करते खेल रचाया, जांत सुपाणा ता जम्मिया परवार भला पाया, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताए, माया जे तर विसरे मोप जे भाओ दूजा लाया। कहे नान गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया, रहा पिया मुल कह मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक वुललाए, ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर संपीए विचों आप जाए, जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए, हर आपे अमुल कै भागत ना के नानका जिन हर पले पाए, हर रास मेरी मन वनजारा, रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा, सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जपियो जियो लाह खट्यो दिहाड़ियो, तन तिन्ना मिलया जिन हर आपे भाणा। कहे नानक कर रास मेरी मन हुआ बन जा राय, रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए और तै कित जिचरा, रस पल्ले ना पाया, रस पाए पल्ले पी, रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहा रस करमी पाईए सतगुर मिले जिसे आए। कहे नानक हो रहा नरासा विसरे जान वसे मन आए, श्री राम मेरे यार तू मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया, हर आपे माता आपे पिता जन जीव पाए, जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सरिटका मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया, मन चाओ भया ब्रव आगम सुनियार, मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनियार, गाओ मंगल नित सखिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रवे आ मिलिया करण कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए, कहे क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक इहो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया, नित्रो मेरे हर तुम मैं जो तरी, हर बिनिवरणा देखो कोई, हर बिनिवरणा देखो कोई, नदरी हर निहालिया इहो वे संसार तुम देख दे, हर का रूप हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझे आ जा वेखा, हरे घर बिनिवरणा कोई। कहे नानक हे नेत्र अंध सह सतगुर मिले दिव दृष्ट होई, हे सरवण मेरे हो साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी, साचे लख वडाणी ताकि गात कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवन नौ दुआरे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी किना दसवां द्वार दिखाया, तहे अनेक रूप नाव नव निध तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक कर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, यो साचा सोहिला साचे घर गावहु, गावहु तां सोहिला घर साचे, जिथे सदा सच त्यावै सचो त्यावै, जा तुद पहावै गुरमुख जिना बुझावे, यो सच सबना का खसमै जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सचे घर गावे, अणत सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमरओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया।

महाराज जी आप जिया दे हजूर अरदास बेनती है जी। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साज बखाना। आप जिया ने कृपा रहमत की सच्चे पातशाह दर कर दे प्रीतवान। भाई जगदीप सिंह बीबी चितवन कौर सच्चे पातशाह जी, उन्हां दे बेटे सच्चे पातशाह सगिल सच्चे पातशाह जी, समूह परिवार वालों बच्ची सिमोन कौर दे सच्चे पातशाह जी, जन्म दिन ते आपदा शुकराना करदिया होया परसों रोज रोज तो समूह परिवार वालों तुरकी बाणी दे श्री खंडपा साहिब रंभ करवाए सन। इस वेले संपूर्णतावां होईआं हन, पातशाह जी कृपा करनी जी समुची बाणी पढ़

चरण कम संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मतरीत, मंतन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजमा, कर दूजा जानड़िए के कर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक अवर सियाणपा बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनु हो है दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीमा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम आराधे नाम बखाने, हर नाम में ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा। बटभागी से काढ़िए प्यारे, संत संग जिना बासो, अमृत नाम राधिये निर्मल मन होवे पर गासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जम की काने, तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाने। ऊच पार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावते उधरे सुनते उधरे, बिनसे पाप कनेरे। पशु प्रेद मुगत को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलिहारे। बिलावल महला पंजमा, बिखे बन फीका त्यागरी, सखिए नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी न हो बत जियो। मान महत न सकत ही काई, साधा दासी थियो, नानक से दरसो बा बनते, जो प्रभ अपने कियो। हर चंद यौरी चित प्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल सांग न चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस पुगण आत रूप रस माते, इन संग सुख न पाया, तन तन हर साध जन सखिए, नानक जिनी नाम त्याया। जाए बसो बड़ भागणी सखिए, संतां संग समाइए, तै दुख न भूख न रोग न व्यापे, चरण कमल लिव लाइए। तै जन्म न मरण न आवण जाना, निहचल सरणी पाइए, प्रेम बछो न मोह व्यापे, नानक हर एक त्याइए। दृष्ट धार मन बेद्या प्यारे, रतड़े सहज सुहबाए, सहज सहज सुहावी संग मिल प्रीतम, अनद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मंतन इच्छ पुजाए, नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया, कहना कछु ना जाए। राग बिलावन महला पंजमा, कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एको रूप सगलो पसारा, आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ई पाए, जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ। अनक रंग निर्गुण एक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर, आपे सेवा, आप ही पुजारी, आपे देवा, आपे जोग आपे ही जुगता, नानके प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजमा, आप पावन आप सुधरना, आप करावन दोष ना लेना, आप बचन आप ही करना, आप विभु आप ही जरना रहाओ। आप ही मस्ट आप ही बुलना, आप ही छल आ ना जाई छलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही कटकट आप अलिपना, आपे विगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजमा, पूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरबड़ भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुख दूर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बहां पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजमा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कवन सु मत जित हर हर जपना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरे आंगन रहाओ। अनक जुगत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाए।

छोड़ परपंच प्रभ स्यों रचो तज कूड़े नहे, जिन अनेक एक भौ रंग किए है होसी एहे, कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे, ऊंचे ते ऊंचा बड़ा सब संग बरनहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे। बिलावल महला पंजमान, एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समर्थ प्रभ पूरन गुण तास, जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रत पारे, दीन दयाल कृपा निदे साथ साथ समारे, करणहार जो करहया साई बड़े आई, गुरपूरे उपदेशया सुख खसम रह जाई, चिंत देसा गणत तज जन हुकम पछाता, न बिन से न छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजमा, महातपत ते पही सांत परसत पाप नाठे, अंधकूप में गलत ते काडे दे हाथे, ओए हमारे साजना हम उनकी रेन, जिन पेट थोबत सुखी जी दान देन रहाओ, परा पूर्वरा लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साध के पूरन आसाए, तै बिन से त्यो लोक ते पाए सुख थान, दया करी समरथ गुर बसया मन नाम, नानकी तू टेक प्रभ तेरा आधार, करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार। बिलावल महला पंजमा, सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ सराना, करने हार न बूझी आप गने बिगाना, दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चित आए, संतन के आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ, ऊंचे ते नीचा करे नीच खिन थापे, कीमत कही न जाइए ठाकुर पर तापे, देखती लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया, करण कारण समर्थ प्रभ तेरी शरणाई, हर दिन सरैण नानक जपै सद सद बल जाई। बिलावल महला पंजमा, जल टोवो ए शीस कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो, करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ ते पावो, दियो सुहनी साध के बीजन टो लावो रहाओ, अमृत गुण संत बोलते सुन मन है पिलावो, उआ रस में सांत त्रिपत होए बिखे जलन बुझावो, जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो, उठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावो, नानकी पर बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजमा, एहो सागर सोई तरे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे बड़ पागी पाए, सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रहाओ, अगन सागर ते काडया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पै सहाई, जन्म मरण दुख काटया सुख का थान पाया, काटी सिरक परम मोह की अपने प्रभ पाया, मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजमा, बंधन काटे आप प्रभ हुआ किरपाल, दीन दयाल पर पार ब्रह्मता की नदर निहाल, गुर पूरे कृपा करी काट्या दुख रोग, मंतन शीतल सुखी पै प्रभ त्यावन जोग रहाओ, औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै, साध संग मंतन हितै फिर दुख ना जापै, हर हर हर हर जापिए अंतर लिबलाई, किल्ब कुतरे शुद्ध होए साधु शरणाई, सुनत जपत हर नाम जसता की दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजमा, पैते उपजे भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जप गोविंद का बिन से परम परांत, गुरपुरा जिस भेटिया ताके सुख परवेश, मन की मत त्यागिए सुनिए उपदेश।

0: सिमरत सिमरत सिमर येसो पुरख दतार मनते कभु न बिसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यो रंग लगा अचरज गुरुदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लाभो सेव निधन अमृत पिया मन तन आनंद नानक कभु न बिसरे परमानंद बिलावल महला पंजमा तृष्ण बुझी ममता गई नाठे पै परमा थित पाई आनंद पया गुर कीने धर्मा गुरपुरा अराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल पया पाया सुख बीर रहाओ सोवत हर जप जागया पेख्या बिस्माद पी अमृत तृपतास्या ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगीत रे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बिलावल महला पंजमा हर भगतां का आसरा अन नाही ठाओ तान दिबान परवार तन प्रभ तेरा नाओ कर कृपा प्रभ आपणी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ संतां टेक त्यावना दूसर को नाहे एक सागे बेनती रव्या सर्व थाए कथा पुरातन एवं सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे बिलावल महला पंजमा बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटिए राखो हर नाथ तो शरणागत माधवे पूरन दयाल छुट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आशा परम विकार मोह ए मह आशा परम विकार मोह आशा परम विकार मोह इन मह लुभाना झूठ समगरी मन बसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे ज्यो तू राखे त्यों रहा प्रभ अगम अपारे करण कारण समर्थ प्रभ दे अपना नाओ नानक तरिये साध संग हर हर गुण गाओ बिलावल महला पंजमा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महा मोहनी मोहया नर की रीत मन खुठुर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा खर खर का पखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाओ जप तब संजम तुम खंडे जम के दुख भांडांड सिमर नाही जोन दुख निर्लजे भांड हर संग सहाई महा मीत तिस्यो तेरा भेद बीदा पंच बटवार भी उपजो महा खेद नानक तिन संतर शरणागति जिन मन बसकीना तन तन सर्वस अपना प्रभ जन को दीना बिलावल महला पंजमा उदम करत आनंद पया सिमरत सुख सार जप जम नाम गोबिंद का पूरन विचार चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीमा पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीमा रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब लो सब कै मन लोच पर उपकार नित चितपते नाही कछ पोच धन सुथान बसंत तन जह जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज बिश्राम मनते कदे न विसरे अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जाके सब किछ हाथ महला पंजमा जिन तू बंद कर छोड़िया फुन सुख मैं पाया सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया जीव त्या अथवा मुआ किछ काम न आवै जिन एहो रचन रचाया जिन एहो रचन रचाया को तिस स्यों रंग लावै रहाओ
1: नानक गुण कार्ड बला मुला वजा खोजत खोजत मैं हरा ਕੋਜੂ ਮਨਸਾਨ ਅਸ਼ਲ ਸ਼ੇਰ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕਵ ਦੇਖੂ ਪ੍ਰਭ ਆਤਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜਾਗਰ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵਾਲਾ ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਵਰਨ ਸਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਪੰਜ ਦਾਤ ਠਾਕਰ ਅਮਨਾਸ ਉਸ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਕਰੇ ਵਿਰਲੇ ਜੋਗੀਸਰ ਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਸਰ ਸੁਮਨ ਤਰਸੋ ਬਾਹਰੇ ਬਿਰਸੇ ਤੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੇ ਵਿੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ਬਲਾਵ ਮੁੱਲਾ ਵਜਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸੋ ਵਰਸਨ ਪੈ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਜਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਆਹਾਰ ਆਪ ਖਾਦ ਖਾ

सूही ललत बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला तरवा सरवर जब उछले तब तरण दुहेला हथ न लाए कुसंबड़े जल जासी टोला रहाओ एक आपी ने पतली सह केरे बोला दुद्धा थनी न आवई फिर होए न मेला कहे।

नानक दास ताकी सरनाई सब को शब्द अखंड अपार बिलावल महला पंजवां ताप संताप सगले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बक्सिया संतन रस भोग रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुण गाव नित राम के एह अवखद जोग आए बसो कर देश में एह पले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न पै लह गए बेयोग बिलावल महला पंजवां काहू संग न चाल ही माया जंजाल उठ सुधारे छत्रपत्र संतन के ख्याल रहा अहां बुद्ध क्यों बिन सना एह धरती टाल बहु जोनी जन्म मरे बिखिया बिकराल सत वचन साधु कहे नित जपे गोपाल सिमर सिमर नानक ते तारे हर के रंग लाल बिलावल महला पंजवां सहज समाद आनंद सुख पूरे गुर दीन सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ जय जय कार जगत मह लोचे सब जिया सो प्रसन्न पै सतगुर प्रभु कछ बिघन न थिया जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा वड़ियाईया नानक गुरपास राग बिलावल महला पंजवा घर पंजवा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू कर बार बिरस बार न लागे ज्यो कागद कागद बूंदार सुन मेरी मन सा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साध करही जोगी तज गए कर बार रहाओ जैसा सुपना रहन का तैसा संसार दृष्ट मन सा विनसिए क्या लग है गवार कहाँ सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्त्र हर द्वार जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार बिलावल महला पंजवा लोकन किया बड़ियाईया बैसंतर पागो ज्यो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जाओ वियो जाओ प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो लपट रहो मन बासना गोरम बेल हार त्यागो रहाओ करो बेनती अत कनी एह जियो हमागो अर्थ आन सौ वारे प्रिया निम्फ सुहागो पंच संग गुरते छुटे दोख अर रागो हृदय प्रकाश प्रगट पया निस बासर जागो सारण सुहागन आया जिस मस्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिसको लगा जिस कैवड भागा मैला कदे न हो वई नह लागे दागा प्रभ पाया दुख दाई सुख दाईया मिलिया सुख पाए सहज समाना पी तेरे छोड़या नह जाए रहाओ जरा मरा नह ब्या पई फिर दुख न पाया पी अमृत आगाने आ गुर अमर कराया जो सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला

राखो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तहारे सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे रहाओ हम अवगुण करह संख नीत तुम निर्गुण दा तारे दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे तुम देवो सब किछ दया तार हम अकृत कनारे लाग परे तेरे दान स्यो नह चित खस मारे तुस्ते बाहर किछ नहीं पव काटन हारे कहो नानक सारन दयाल गुर लेहो मुग्ध उधारे बिलावल महला पंजवां दोस न काहूं दीजिए प्रभ अपना त्याइए जित से भी है सुख होए कना मन सोई गाइए कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमा रहाओ तुम राख हो त्यों रहा अवर नाही चारा नीतरिया तर तेरिया एक नाम अधारा तुम जो तुम करो सोई पहला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे बिलावल महला पांजवा मेरत हसै सिर ऊपर पशुआ नहीं बुझै बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझै सतगुर सेव हो अपना काहे फिर हो अपागे देख कसुंबला रंगला काहे भूल लागे रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कहताई माटी से माटी रली नागा उठ जाई जाक किए श्रम करे ते बैर बरोधी अंतकाल भज जाहेगे काहे जलह करोधी दे दास रेण सोई होआ जिस मस्तक भाग कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना बिलावल महला पांजवा पिंगल पार्वत पार परे खल जतर बखीता अंदले तिर पवन सूजिया गुर भेट पुनीता महमा साधु संग की सुनहो मेरे नीता मैल खोई कोट अगहरे निर्मल पै चीता रहाओ ऐसी के भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो कीनो अपनो तिस अपैदान दीता सिंह बिलाई हो गयो तृण मेर दिखीता शर्म करते अड दाम कौते गणित नीता कवन उड़ाई कह सको बेअंत गुनीता कार कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता बिलावल महला पंजवा अहम बुद्ध प्रबाद नीत बोलो बरसना साध लपट कपट गृह बेद्या मिथ्या बिख्याद ऐसी पेखी नेत्र मह पूरे गुर प्रसाद राज मिलक धन जोवना नामे बिन बाद रहाओ रूप तू सुगंध रूप तूप सुगंध ता कापर पोगाद मिलत संग पापिस्त तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानुख पया खिन पंगन देहाद एह अवसर ते चुकिया बहजोन परमाद परम कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूर्ण नाद बिलावल महला पंजवा चरण पै संत बोहे था तरे सागर जेत मार्ग पायो ध्यान में गुर मह गुर दसे पेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हर हेत उठत बैठ सोबते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आगे भगे जब साध संगेत पूंजी साबद कणो लाभ ग्रह सोभा सेत निचल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत परम पलावा मिट गया प्रपेक्त नेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहियत केत नानक पाया साध संग हर हर अमृत बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिर थारी मिलत संग सा प्रभ मिटे गत पई हमारी जा दिन पेटे साध मोहे उआ दिन बलहारी तन मन अपनो जियरा फिर हो वारी रहाओ इत छड़ाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी सगल रेन एह मन पया बिनसी अपतारी निंद चिंद प्रभ दुख न एह खिन मह जारी दया मया अर निकट पेख नाही दुवारी मन तन शीतल पाया संसारी जीत जीत सा प्रांता।

नाम संग किनो व्यवहार नमो ही इस मन का दर नमो ही चित किनी ओढ़ नाम जपत मिटे पाप गोड़ रास दी हरे को नाम मन का एट गुर संग ध्यान राव नाम हमारे जी की रास नमो संगी जत कर जात नमो ही मन लगा मीठा जल थल समय नमो डीठा नमे धर्गे मुकुजले नमे सगले कुलदरे नाम हमारे कार्य सीधा नाम संग एह मनवागीर नामी ही अमन दर्वो भय नामी आमन जावर गुरपुरे मेले गुणदास कहो नानक सुख स जनवास गौंड मोहल्ला वजो निमाने को जो दे तो मान सगल भुगे को करता दान गर्भ गौर में राखन हार तिष्ठा कर को सदा नमस्कार ऐसो प्रभ मन माहे द्याए कटव कट जत कते सहाय राव रंग कराओ जाके कसमान कीट हत सगल बुरान भी पूछना मसल तरे जोगी करे सो आपे करे जाका अंतना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आव कार आम रंकार कट कट कट सब कट दार नाम रंग भगत भय लाल जस करते संत सदा निहाल

जन्म मरण की त्रास मिटाई, घर पूरे की व्यंत मिटाई, घर पर साध उरत कौन विकास, अंधकार में पया प्रकाश, जिनकी आसो घर से जान्या, घर के बाते मुक्त मन मान्या,

अवताय राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लिमलाय राम राम जप निर्मल भये जन्म जन्म के

मन तन प्रभे आराधी है, मिल साध सुवागै उच्चरत गुण गोपाल जस दूर ती जम भागै। मन तन प्रभे आराधी है, मिल साध सुवागै

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगना संग आलापे आठो नंदना प्रथम राग भैरो वे करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बुलावली पुन्या की गावे पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बुलावली पुन्या की गावे बंगली पुनस लेखी की पही बारी ए भैरों की पांचो नारी पंच मार्ग तुसाग सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बलावल गावही अपनी अपनी भांत हठ पुत्र भैर

मूल न पाया मित पैजे मित बिगस जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु परता।

केसो गोपाल पंडित सदेव हर हर कथा पढ़े पुराण जीव हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर रंग गुर पावे पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुरु बोले यार मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रुजाए जियो मोहरी पुत सरमुख होया।

हर धन परगासया हर कृपा ते वस मन आए रहाओ अवगण काट गुण हृदय समाए पूरे गुर कै सहज सुभाए।

सारे बोलो उच्चरित उच्चरण तक बोलना राम राम बोल बोल वाहिगुरु वाह गुरु वाह

그래. नेत्र बंद करके अखां बंद करके जुड़ के सारे बोल के सुनो गुरु गुरु गुरु गुरु

0: अखां बंद करके जपो, जुड़ के मन नूं जोड़ के वाहिगुरु नाल
1: राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु